0: खेत एक मालो को विंतिस एने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माय का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बस जोविंटुरी नी लिली नी जोविंटुरी नी पापेल जोविंटुरी नी ना कंडीशन जोविंटुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबने मक हवानो इन जोविंटुरी बारा माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम हम से में इंडिविडुअल नियन इड पॉइस हवने मिसाजन माका तंब जोविंटुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसे दारे नी हने सने आन हुसी तो तेवरिया बारा कीड़ा हुसी तेरा ना इंजुस क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवा निहरा ओला हाडोमी ओने मालुक सीरा तंबने मा खाउ दिहन से हाउ ही ना मुरारा हाउ दिहन हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवा निहरा ओला हाडोमी सोसेदारे तंबे इंटरेस हुसी इतने हमु तुक ने इंटरेस बस सोसेदारे ने मक इंपोर्टेंट अतु लोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जोवेंटुरी तेंगे साई अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जोवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुझे आकर आते थे बस जोवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबाइन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी दारे हुरी कॉन्ट्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी दारे मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबाइन हीरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमातुरी दारे कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी दारे मकाउ साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत नेबे मक लॉस दिहन साला इदेन मक इंपोर्टेंट लबेले दिहन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah mas jadi ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa Venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu tetes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filofali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk Juventus sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena po. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak ba Juventus sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk Juventus hotu makau hadomi. How la iha lefon ne bemak furak atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne bemak kita muris ba ni susidar ne bemak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne bemak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tamba ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ram phone fini phone tenki kuliah los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional obrigado
0: ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hases ang husi ita bos sita futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus i obrigada